ओम श्री प्राण भगवान की देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म

श्रीदीप नारायण भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

श्री दीप नारायण भगवान की देवादिदेव देवपुरी श्या महादेव की सदगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की अलखपुरी जी महादेव की सत्य सनातन धर्म की जय।

होली श्री दीप नरयम भगवान की जय। श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। श्री देवेश्वर महादेव की जय। विश्व गुरु श्री स्वामी माहेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री श्री देवेश्वर महादेव की जय। श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर योगिराज परमहंस श्री स्वामी माहेश्वरानंद

0: बांधवा शिव भक्त स्वदेशो भुवनत्रयम् शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धिर्विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योति परब्रह्म दीपम सर्वे मोहनम दीपनम सजते सर्वं संध्या दीपम सर्वसत्यम ब्रह्मार्पणम ब्रह्माहवीर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मेवतेन गंतव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेण मार्गेण महीन्महिषा गौ ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकः समस्त सुखिनो भवन्तु ओम शांति शांति शांति सद्गुरुदेव भगवान की जय हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो गुड एपेटाइट
1: योर वे टू आदियत
0: Children, those who were all performing, come for prasad.
1: A gyerekek, akik az előadást tartották, jöjjenek prasadért.
0: Have a beautiful, wonderful afternoon.
1: Gyönyörű délutánt.
0: I will see you at 1:45 for Yoga Nidra. We're here.
1: 3:45, 2-kor itt találkozunk a Yoga Nidrán.

0: हरियाम भगवान की जय।
1: श्री
0: विश्व कुंदा परम स्वामी महेश्वर जी गुरुदेव
1: की जय।
2: रिमूव ऑल द वॉरीज, बिकम द वन विदाउट एनी वॉरीज।

ओम शल भुर्ज महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। सुदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंसम श्री माधवानंदपुर जी सदगुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंसम श्री महेश्वरानंदपुर जी गुरुदेव की जय। सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमम अस्मदाचार्य पर्यंतं वंदे गुरु परंपरां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश।

महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत ब्राह्मण्ड के रचयिता, सृष्टि के पालनकर्ता, घटघट में रहने वाले परब्रह्म परमात्मा को शत शत नमन। आराध्य श्री गुरुदेव के शुभ चरण कमलों में कौटि कौटि साष्टांग दंडवत। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है कि हम यहां इस आश्रम के अंदर सत्संग में आए। ये हमारे पूर्व जन्म का अच्छा कार्य, अच्छा कर्म यहां लेके आया है। ब्लेसेड सेल्फ, ऑल डियर वंस राउंड द वर्ल्ड, द ब्लेसिंग इज कमिंग टू यू फ्रॉम होली भारत, ब्यूटीफुल कलरफुल राजस्थान, पिंक सिटी, जयपुर के जोधपुर, जयपुर। वेलकम। टुडे सब्जेक्ट इज द नाद योग। वेदा से नाद रूप पर ब्रह्मा, वेदों में कहा गया है कि नाद रूप पर ब्रह्म, अगर परब्रह्म परमात्मा को देखना है कि वो कैसे हैं, तो उनका और कोई स्वरूप नहीं है, केवल नाद। द वाइब्रेशन, द रेजोनेंस, अनंत ब्राह्मण्ड, सहस्त्र सूर्यस, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ द सन सिस्टम्स, एंडलेस स्टार्स एंड मून्स, ऑल इज क्रिएटेड आउट ऑफ द वन, द साउंड। शून्य काश, पूरे ब्रह्मांड की रचना, जिसके अंदर हजारों लाखों लाखों सूर्य मंडल हमारे ऋषि मुनियों ने कई लाखों करोड़ों वर्ष पहले अपने ज्ञान शास्त्रों के अंदर लिखा है, बताया है। यहां तक कि एक योगी की चेतना 14 लोक 2100 ब्राह्मण्ड, ये जो 7 लोक बताए गए हैं, इनके परे 2100 सूर्य मंडल है, वहां तक योगी की चेतना पहुंच सकती है। उसके आगे जाने के बाद में वो स्वयं जो है वो फिर वापस नहीं आएगा। 14 लोक 2100 ब्राह्मण्ड, 14 different worlds and 2100 sun systems above that, the consciousness of the yogi can expand, and till that the awareness of in that consciousness can reach and come back and give the knowledge to us. Modern science try to come to the moon, try to go to the Jupiter or the Mars, which is within our sun system. But how the yogis went there, that is the evidence of the Hindustan's Bharat ki Sanskriti aur Bharatiya Yogi Muni Rishi Muniyo ki Shakti aur Gyan.
और वो जो कहा गया है कि एविडेंस विल नेवर डाई, कोशिश करते हैं लोग, हमारा धन चुराने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो उनके पेट में पचता नहीं है. ऑल दिस दैट टाइम कॉल्ड द शून्याकाश, ए वॉइड डार्क ब्लू स्पेस, नथिंग इज इनसाइड, नथिंग. देयर अगेन शास्त्र सेड, वेदा सेड, एकोहम बहुश्यामी, आई एम वन एंड नाउ आई विल मल्टीप्लाई माई सेल्फ. क्या भगवान की इच्छा होती है? क्या भगवान इच्छा करता है कि मैं एक हूं, अनेक में बनूंगा? वो कौन है कहने वाला? देखा किसी ने? सुना किसी ने? लेकिन ऋषि मुनियों का कहना है, वो जो है जिसको हम कहते हैं कि भगवान ने कहा या जिसने कहा कि मैं एक अनेक में बनूंगा, वो एक जो है वो एकाकार, निराकार, निरंजन, नित्य, चिदानंद रूप स्वरूप, संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना, अनंत की चेतना, हरि अनंत, अनंत हरि कथा. दैट टाइम इन एंडलेस देयर अवेक इज पूर्णा, ए वाइब्रेशन, ए रेजोनेंस, दैट्स कॉल्ड द साउंड. And that sound we call Om, Akar, Ukar, Makar. Through that resonance, whatever is visible in this universe, whatever is invisible but you can feel, in that all is created by that one Bindu, one Akar. Nad Bindu Kala. नाद बिंदु, उस बिंदु से शुरुआत होती है, वह बिंदु अभी तक है. जिस समय आप मां के गर्भ में प्रवेश करते हो, उसमें सबसे पहला एक बिंदु केंद्र बनता है, वो हमारी नाभि है, और उसी के पास में आंत बनने लगती है, फिर रीढ़ की हड्डी बनती है, फिर दूसरे अवयव और अंग शरीर के जो है बनते हैं. लेकिन बिंदु तो वो है नाभ, और वो जो है मां का गर्भ जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड है. मां की कोख जो है वो संपूर्ण आकाश तत्व है, और वो जीवात्मा जो है वो चैतन्य, उस परमात्मा का स्वरूप चैतन्य. तो जब कहा जाता है कि भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला, वो कमल ये है कि विष्णु जल के अंदर रहता है, और वो जल के अंदर वही चेतना जो कि मां की शक्ति है, वो रक्षा करना. भगवान विष्णु क्या करते हैं? रक्षा. ब्रह्मा इज अ क्रिएटर एंड विष्णु इज द प्रोटेक्टर एंड शिवा इज द लिबरेटर, नॉट अ डिस्ट्रैक्टर. But he destroys the negative. Shiva is not a destructor. तो वह जो मां के शरीर के अंदर जो गर्भ बढ़ता है वो ही कमल है, और वो ही कमल जो है जब जन्म होता है बच्चे का, अभी भी उसी बिंदु से जुड़ा हुआ है. अनंत मां अंदर अनंत है. उपनिषद कहते हैं कि सबसे पहले भगवान मां है, मातृ देवो भव. वो ही कमल है, वही कमल बढ़ता है, और वही उसकी कई अलग से हमारे योग के अंदर वही ईडा पिंगला सुषुम्ना है, वही नाड़ी है, वही कमल खुलता है. ब्रह्मा वही ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म जाने ते ब्राह्मणा. वो
उसी नाद का स्वरूप जो है वो नाद, वो रेजोनेंस, दैट साउंड इज स्टिल रेजोनेटिंग कॉन्स्टेंटली बियॉन्ड मैनी सन सिस्टम्स एंड इन आवर ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी. Therefore, Veda said, yatha brahmande, tatha pinde. जो ब्राह्मण के अंदर है वो हमारे शरीर के अंदर है, और जो हमारे शरीर में नहीं है वो बाहर नहीं है. हर एक सेल्स हमारे बॉडी के जो है, हर एक अवयव हमारे शरीर के है, उसके अंदर में नाद है. वो सोनोग्राफी करते हैं ना साउंड के साथ में, हृदय की आवाज सुनाई देती है. एक मिनट में कितना लीटर हृदय खून फेंकता है? यहां डॉक्टर साहब बैठे, कार्डियोलॉजिस्ट, रॉन्ग मत बोलना.

हम हमारे जीवा के मुंह के स्वाद के कारण हमारे कोई शरीर की अवयवों का ध्यान नहीं रखते हैं। इस कभी आपके हार्ट को कहा कि तुम एक दिन विश्राम कर लो, मामला पूरा। तो अरे उसको विश्राम के लिए नहीं तो उनकी थोड़ी सहायता तो कर लो। आपका सबसे अच्छा सेवक आपका जो है वो सेवक है हमारा हार्ट। चलो नाद, इसीलिए हमारे चार वेदों के अंदर एक और पांचवा वेद है जिसका क्या नाम है, गंधर्व वेद। गंधर्व वेद जो है नाद योग है और उसके अंदर में जो है ये नाद हमारे शरीर में जो प्रकट हुई है मानव के जीवन में, मानव की बुद्धि के द्वारा और मानव योग साधना करके उसको पहचान सकता है तब भगवान का साक्षात्कार होता है, जब तक नहीं होता नहीं तो नहीं होता है। एक छोटा दृष्टांत, देयर इज वन स्मॉल स्टोरी। गॉड हैड ए ब्यूटिफुल गार्डन, वेरी ब्यूटिफुल गार्डन। भगवान के बहुत सुंदर बाग था, बहुत अच्छा, और भगवान के वहां अच्छा निवास था, वहां भगवान रहते हैं। एवरी मॉर्निंग सुबह उठ करके भगवान अपने बगीचे में घूमने को जाते थे। अर्ली मॉर्निंग गॉड गेट अप एंड वॉक थ्रू द गार्डन एंड ही टचेज ईच एंड एवरी ब्लॉसम्स फ्लावर्स प्लांट्स ट्रीज एंड ऑल, जितने भी वनस्पति हैं भगवान उनके हाथ लगाते हैं, भगवान देखता है, भगवान चलते हैं और जितने भी पौध हैं, जितने पौधे हैं, जड़ी बूटिये हैं, वृक्ष हैं, सभी भगवान को कहते हैं गॉड आई लव यू, गॉड आई लव, भगवान मैं आपसे प्रेम करता हूं, हे प्रभु। और भगवान भी कहता है कि यस माय डियर आई लव यू, आई लव यू। भगवान भी हमारे से प्यार करते हैं। तो वहां एक बांस था, है भगवान के बगीचे में सभी है। सो देयर वॉज ए बंबू एंड बंबू वॉज इन सम कॉर्नर। तो बंबू भी दूर से कहता था बांस के, भगवान मैं आपसे प्यार करता हूं। भगवान आते कि हाँ माय डियर बंबू आई लव यू आल्सो वेरी मच। भगवान उस बांस को भी टच करते थे। फिर भी हमारे कुछ महापुरुषों ने कहा है कि बांस उगा भूमि पर और दुखी हुई बंदराय, एक दिन ऐसा आएगा सबको देगा जलाए। जब कहीं बांस उगता है तो पूरी वनस्पति दुखी हो जाती है, क्योंकि बांस हवा से आपस में घिंचेगा और आग होगी सबको जला देगा। बांस के अंदर तीन अवगुण है। बांस चाहे अपने चंदन के पास हो, बांस चाहे गुलाब के फूलों के पास बीच में हो, वो सुगंध नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके अंदर अवगुण है। एक तो अवगुण वही है कि वो इतना कड़ा है कि उसके अंदर से कुछ पार नहीं होता है। वो कड़ापन यानी अपना अहंकार। ज्यों पद बढ़ता है तो मद भी बढ़ता है। ऐसे जो बड़ा हो गया हमारे समाज में, अगर कोई बड़ा अफसर बन गया और कोई हमारे समाज का कोई गरीब जाएगा कि साहब माने कोई नौकरी नहीं, बाद में फिर बात करेंगे, अरे भाई सहायता तो कर। तो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा इसके लिए, जो बड़ा हो गया, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। अरे समाज में कोई इतना बड़ा हो गया और गरीबों की हमारे समाज की सेवा नहीं करता है, अरे तू कब तक रहेगा, चार दिन रही चांदनी आखिर अंधेरी रात। पद का मद तुम कहां तक लेके चलोगे। गुरु नानक साहब कहते कि सब दिन हो तन एक समान, लेकिन फिर वो तुरंत गुरु नानक साहब सेड

कि एवरी डे इज ए गोल्डन डे, सभी दिन स्वर्ण दिन है। किसके लिए? संत के लिए। संत कपड़ा पहनने से नहीं होता, रंग बनाने से नहीं होता है। संत की क्वालिटी हृदय के अंदर होती है, विचारों के अंदर होती है, दया के अंदर होती है। संत वो बैठा है और कोई आ गया तो कहेगा भाई रोटी खा के जाना, ऐसे मत जाना कि नहीं समय नहीं है, समय नहीं दीदा, ये तो प्रसाद ले जा खाते जाना बेटा, वो संत होता है। लोग आ गए अभी क्या करें, चलो आ गए, कैसे आए भाई, कोई काम है कि नहीं, बस जाओ। वो संत नहीं होता है, खिलाओ, जितना खिलाओगे उतना तुम्हारा तप बढ़ेगा, तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी, आध्यात्मिकता बढ़ेगी। तुलसी दास जी कहते हैं कि तुलसी कर पर कर कर, अरे कि हाथ के ऊपर हाथ करो तुम देते जाओ, तुलसी कर पर कर कर, पर कर कर न कर, नीचे कर मत करना। तुलसी कर पर कर कर, पर कर कर न कर, तहां दिन पर कर कर उस दिन मरण कर, है कि नहीं? मांगन मरण समान है, जो कोई मांगन जाए उनसे पहला वो मरा जिसके मुख से निकला ना आए। वो संत की पहचान होती है, चाहे ग्रस्त में भी हो तो भी देना होता है, दया होती है, और वो माताओं के अंदर जाता होती है। दो तीन आदमी एक साथ रह गए तो कोई आते तो देखते घर के अंदर को जाने के, भूकंप हुआ अभी, पेंट कहीं पड़ा, समझ वो मोजा कहीं पड़ा है, वो पड़ा है, आएगा पानी पियोगे सा, अच्छा पानी लाता हूं, दूसरा क्या कहीं, और जहां बहने हैं माताएं हैं, घर की शुद्धता है, कोई भी मेहमान आता जल पिलाएंगे कुछ ताके, बिना कहे ही पूछते नहीं पानी पियोगे तो कहीं दारू पाए तो कहीं सही बात है कि नहीं? नारायण नारायण नारायण। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर, उसका कड़कापड़ा जो है वो उसका स्वाद नहीं ले सकता है। दूसरा, मान लो किसी रूप से अगर सुगंध अंदर चली भी जाए तो अंदर में है पोल, पोल है कि नहीं, अब वो पोल में कहां रुकेगी वो सुगंध, वो तो अच्छा वो पोल है तो वो सुगंध आगे जाना चाहती है लेकिन उसके अंदर कपट की गांठ है, गांठ है कि नहीं, बांस में कपट की गांठ, बीच में है पोल, और अगर उसको कहे तो तेरे अंदर तो पोल है, थोता चढ़ाने बाजे घना, भरा तो जबके नहीं जबके सोई आधा, घोड़ा तो भूके नहीं भूके सोई गधा, अगर इतना कह दिया तो उसको क्या होता है, गुस्सा आता है। तो जब वो बांस अपनी जवानी पे आ जाता है तो हवा आती है तो रगड़ता है, घिसता है तो उसमें आग लग जाती है, सब वनस्पति को जला देगा। ऐसा हमारे समाज में, हमारे समाज के अंदर पैदा होए तो क्या करेंगे उसे। बांस उगा भूमि पर दुखी हुई वनराय, एक दिन ऐसा आएगा सबको देगा जलाए। और आप जैसे धर्मात्मा, आप जैसे संत आत्माएं, आप जैसे जिनके माता पिता की पूर्ण आशीर्वाद है, गुरुदेव की पूर्ण आशीर्वाद है, आप अभी यहां बैठे हो वो आपके पूर्वजों की कमाई है, अभी खा रहे हो वो पूर्वजों की कमाई है, अब तुम तुम्हारे बच्चों को क्या दोगे वो फिर तुम्हारी कमाई है। तो कहा कि चंदन उगा भूमि पर और खुशी हुई वनराय, एक दिन ऐसा आएगा कीमत देगा बढ़ाए। जहां चंदन उगने लगता है तो पूरे फॉरेस्ट उसकी रक्षा हो जाती है, यहां पेड़ नहीं काटना यहां चंदन उग रहा है। तो ऐसे हम चंदन चाहते हैं हमारी समाज के अंदर, माता जने तो ऐसा जन के दाता के शूर, नहीं तो रहिए बांजरी मत गमाइए नूर। क्योंकि तीन सजावट देश को, हमारे इस भारतवर्ष की शोभा हमारी माताओं के द्वारा जो संतान पैदा होती है उसकी है। तीन सजावट देश को, शक्ति संत और शूर,
और तीन लजावत देश को कपटी कायर और करूर। बात चल गई थी आज कहीं कि हमारे यहां के डॉक्टर अमेरिका जाते तो उनको फिर स्टडी करने लेनी पड़ती है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि अमेरिका हमारे यहां के डॉक्टरों को कितने पैसे देकर के, फर्स्ट क्लास का टिकट देकर के 5 दिन के लिए भी बुलाते हैं। कितने डॉक्टर्स जाते हैं हमारे मुंबई से, अहमदाबाद से, राजस्थान से, वहां की यूनिवर्सिटीज और वहां के डॉक्टर्स उनको बुलाते हैं, क्योंकि भारत ज्ञान है, भारत ज्योति है, भारत विश्व का गुरु है हर एक फील्ड में, आध्यात्मिकता ही नहीं, हर एक जगह में। आविष्कार भारत में जो किया हुआ है, साहित्य कहीं होगा, अब जो है ये टेक्नोलॉजी जो है, लेकिन देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में भी ब्रेन जो है हमारे भारतीयों का, ऐसा ब्रेन कम ही बार मिलेगा। आज से 15 साल पहले जर्मनी ने वीजा फ्री कर दिया था और हमारे अच्छे से इंजीनियरों को वहां काम दे रहे कि आप आइए और हमारे लोगों को सिखाइए। यू नो दैट, आपको पता नहीं होगा। तो भगवान अपने बगीचे के अंदर जा रहे हैं और सभी पेड़ पौधों को हाथ लगाते हैं कि कैसे हो बच्चा, कैसे हो बेटी, कैसे ठीक हो। बांस कहता है कि भगवान मेरा भी प्रणाम स्वीकार करिए और ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे भी आपके बगीचे में रहने की जगह दीजिए। भगवान कहते हैं कि ये बांस, तू मेरा बड़ा प्यारा है, तू मेरे बगीचे में हमेशा हमेशा रहेगा, मैं सबसे ज्यादा तेरे से प्यार करता हूं, बोल। फिर भी कपटी के मन में तो कपट रहता ही है, डाउट कभी आउट नहीं होती है। एक दिन आया, भगवान सुबह उठ करके दोनों हाथ कमर के पीछे, बांस का कलेजा जो हार्ट बीट जो है वो 165 पे पहुंच गई। बांस कहता कि भगवान आज आपके हाथ, आपके हस्त कमल हमेशा आशीर्वाद के रूप में आता है, आज पीछे कमर पे क्यों रखे, पीठ पे चल के क्यों रखे हो। भगवान कहते हैं कि बास, आज मैं तेरे को कुछ दर्द पहुंचाऊंगा। बांस रोने लगा, मैंने क्या गलती की प्रभु, मैंने क्या गलती की, क्यों क्या करोगे प्रभु, यहां से निकाल दोगे? कि नहीं नहीं, मेरे बगीचे में तेरा हमेशा हमेशा के लिए तेरी जगह है, लेकिन आज मैं तेरी भुजा काट दूंगा। मेरी भुजा? भगवान आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन इतना तो मुझे बता दी कि आप मेरी भुजा क्यों काट रहे हो। भगवान कहते कि हे बांस, मुझे तेरी आवश्यकता है। मेरी आवश्यकता आपको? हां बेटा, जो कार्य मैं नहीं कर पाता हूं वो कार्य तुम कर पा सकते। वो कौन सा है भगवान? कि बेटा, मानव जाति का हृदय पत्थर की तरह हो गया है और उसको मक्खन की तरह इतना मुलायम करना है, वो मैं कैसे करूंगा? भगवान आप ही कर सकते हैं। कि नहीं बांस, तुम ही कर सकते हो बेटा, तो मुझे और समझाइए मैं कैसे करूंगा। मेरा हाथ काट दीजिए, आप दोनों ही काट दो, आप मैं आपके अधीन हूं। कि बेटा, मैं तेरे इस भुजा का एक सुंदर बांसुरी बनाऊंगा और उसके अंदर मैं स्वयं मेरे प्राणों की आहुति दूंगा, लेकिन मेरे प्राणों की आहुति की जो ध्वनि निकलेगी वो ब्रह्मांड के अंदर जो कहा है नाद रूप पर ब्रह्म, वो प्रकट होगा और हर एक के हृदय के अंदर जो कठोरपन है वो मिट जाएगा और कोमल हृदय हो जाएगा। बोल सतगुरु देव की। तब से ये बांसुरी बनी भाई, ये भगवान की बांसुरी, ये भारत का असली असली वाद्य जो है
हमारे संस्कृति का, इसीलिए भगवान के हाथ में बंसुरी रहती है, सरस्वती माँ के हाथ में ग्रंथ रहता है, ब्रह्मा जी के हाथ में वेद रहते हैं। काट दिया, बंसुरी बन गई। भगवान नित्य नियम से हमेशा उस बगीचे के में फिरते हैं। एक दिन फिर ऐसे हाथ रख के भगवान आ रहे थे। बास ने सोचा कि आज और कुछ न कुछ दाल में काला है, भगवान आज और क्यों हाथ आप अपनी पीठ पे रख के आ रहे हो कि बेटा आज मैं तेरे को बहुत भयंकर दर्द पहुंचाऊंगा, मैंने क्या पाप किया, मैं कुछ नहीं करता हूं, केवल आपके दरबार में आपके बगीचे में खड़ा हूं और आपके दर्शन की लालसा है। हां बेटा, लेकिन फिर भी मैं आज तेरा जो मूल जो है, गोड जो है, उसको काट दूंगा। तो भगवान कहते हैं ये तो अब माज के साथ क्यों क्या करोगे कि तेरा जो गोड है वो काट दूंगा। अच्छा, मुझे समझाइए काटने का कारण क्या है कि बेटा ऐसा है कि हिमालय की कंदराओं से जहां पानी बर्फ की चट्टाने पिघलती हैं, वो पानी जो आता है वो वहीं कहीं नीचे चला जाता है और इधर उत्तर की तरफ पूर्व दक्षिण की तरफ जहां भारत है अकाल पड़ रहा है, पानी नहीं है, जानवरों को मानव को पीने के लिए पानी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा उससे। हाँ बेटा, ये तेरा इतना ज्यादा गोड है ना, उसको काट के मैं जहां पानी की धारा आती है वहां रखूंगा, तो एक चट्टान से दूसरे चट्टान के आगे रखूंगा तो पानी पूरा भारत की तरफ से आएगा, इसलिए तू ही है, दूसरा तो बिखर जाएगा। तो बांस को कितना ही पानी में रखो वो खराब नहीं होता है, तो वो प्राण रूपी जल हमें वापस पिलाता है। तो ये बांसुरी नाद योग, नाद रूप परब्रह्म, उस परब्रह्म का स्वरूप का, लेकिन हर एक की बात नहीं है। ये बांसुरी क्या छोटा सा ये लकड़ी है, छोटा सा डंडा है, मने देओ तो मैं तो करूं मां टूट हो गई, हां बाबू जी बहुत बढ़िया बनाए रेवा दबे गणो। लेकिन जब अच्छा कोई कलाकार उसको कृष्ण की तरह अपने होठों पे लगाता है तो बांसुरी भी खुश होती है, यहां अब भगवान मेरे से प्यार कर रहे हैं और भगवान का प्राण जो है मेरे अंदर प्राण संचार हो रहे हैं। हम सभी भगवान की बांसुरी हैं, हमारे अंदर जो प्राण संचार हो रहा है वो उसी पर ब्रह्म परमात्मा का दिया हुआ प्राण हमारे अंदर है। जब तक भगवान हमारे को बनाए रखेंगे हम बना रहेंगे, कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके मुख से बांसुरी हटा के ले जाए। नाद, नाद योग, 10 प्रकार की नाद होती है, 10 इंद्रियों से जुड़ी हुई होती है और 10 इंद्रियों के परे जब नाद खुलती है उसको सोहम कहते हैं, आई एम दैट एंड दैट आई एम। उसी नाद को सुनने के बाद योगी की चित्त वृत्ति का निरोध होता है और फिर वो ध्यान में जाता है, नहीं तो वो बुगला होता है, एक पैर पे खड़ा रहता है, ऐसी दृष्टि से देखता है कि जैसे मच्छी आई या मेंढक खा जाऊंगा। एक पैर पे वो खड़ा क्यों रहता है, एक पैर पे क्यों खड़ा है, दोनों पैर पे खड़ा रहना चाहिए बताओ। एक पैर पे वो इसलिए खड़ा रहता है कि मच्छी आ गई तो दूसरा पैर पानी से निकाल के चलेगा तो मच्छी चली जाएगी, इसलिए रेडी रहता है कि कदम लगा के खा जाऊंगा। जीवों के अंदर भी तो कला तो है ना, ये कलाएं जो भगवान ने प्रकृति के साथ जोड़ी हैं अपना जीवन जीने के लिए। तो आज हमारे इस सत्संग के अंदर बहुत अच्छे हमारे कविराज आए हैं, काई ना भूल गयो, ओहो इंद्र दान रत्न, बोलो इंद्र को भी दान देने वाला है, वो रत्नों में भी रतन, वो रत्नु आ गए हमारे पास। अब मेरे रत्नु बहुत चिले, हाँ तो रत्नु के अंदर रत्न होता है और तो कहाँ रहेगा,
रत्ना की खान में

0: रत्न निकलता है ना. सो आई वुड इंट्रोड्यूस यू टूडे. आई स्पोक अबाउट नाद योगा एंड द स्टोरी मेनी ऑफ यू नो ऑफ आई यूज टू टेल अबाउट बंबू एंड द क्रिएशन ऑफ द फ्लूट मीनिंग ऑफ द साउंड एंड द आर्टिस्ट. द आर्टिस्ट इज अ मास्टर. करत करत अभ्यास प्यारे जड़मत होत सुजान रस्सी की आवत जावत सिल पर पड़त निशान. सो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. अभ्यास अभ्यास कौंते अभ्यास. हे अर्जुन हे कौंती के पुत्र सन ऑफ द कौंती. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. बट प्रैक्टिसिंग यू कैन डू मैनी मैनी ईयर्स बट इफ इनसाइड यू डू नॉट हैव दया योर प्रैक्टिस विल नॉट बी सक्सेसफुल. इसीलिए कहा है गुरुदेव बिना कार्य न सरे कोटि उपाय करे कोई चाहे न भव सिंधु तेरे. गुरुदेव बिना कार्य नहीं सरे. तो वही बांसुरी वही नाद जो कि पता नहीं कितने अरबों खरबों वर्षों पहले युग युगांतरों पहले ये नाद ब्राह्मण से उत्पन्न हुई वो आज भी हमारे साथ में है. उसको ही पहचानना भगवान को ही पहचानना है. तो हमारे इंद्रदान जो है वो आपको ही विल प्ले फॉर अस ए फ्लूट एंड दिस फ्लूट इज दैट वन विच वॉज मेड ओरिजिनली बाय मैनी मैनी युगास एगो. बोल श्रीदीप नारायण भगवान की. देवेश्वर महादेव की. धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की. ओम शांति शांति.
1: एक लाइन बोल दो.
0: बोलो 10 लाइन.
1: फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश
0: फ्लोर इज योर्स. उधर थोड़ा उठने मुंडो कर दो
1: वर्ल्ड
0: कैमरा की तरफ.
1: आई विश टू थैंक अ मिलियंस ऑफ टाइम्स टू स्वामी जी फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल सो प्रोफाउंडली एनालाइजिंग the creation of the universe and linking it and bringing it ultimately to the flute which I wish to play before all of you. And I am very thankful to him for inviting me here to deliver this recital of the flute. Thank you, Swamiji.
0: Welcome.

0: ऐसी राग थी
1: ये कोई सारंग राग
0: क्या कोई गीत था
1: सारंग राग थी और उस पे आधारित है गीत छोटी छोटी गईया छोटे छोटे श्री कृष्ण
0: चारण राग है चारण राग
1: नहीं चारण नहीं था सारंग
0: अच्छा सारण
1: सारंग
0: समय कि आप चारण हो इसलिए
1: नहीं नहीं चारण कोई राग
0: अच्छा
1: सारंग राग
0: एक और कोई राग बताओ एक्सप्लेन द पीपल व्हाट यू आर सिंगिंग इन इंग्लिश सो दैट our international audience understands because
1: it was based on rag sarang and it is based upon that I just played the flute about a bhajan about Lord Krishna which says choti choti gaiya chote chote gwal the small cows and so are the cowherds gwale छोटे से हमारे मदन गोपाल सो लॉर्ड कृष्णा टू इज अ स्मॉल पर्सन सिमिलरली सेज दैट घास खाए गईया द काउज ग्रेज ग्रास घास खाए गईया और दूध पिए ग्वाल एंड माखन खाए हमारो मदन गोपाल
0: नेक्स्ट राग कौन सी है क्या गाओगे बताओ
1: अब बाप जी जो निकल जाए उसके बाद में बताऊंगा नहीं, नहीं, नहीं, नहीं पहले बताना बड़ा कठिन है मैं चाहूं वो राग निकल ही नहीं पाती
0: नहीं, नहीं, आप कौन सी राग
1: फिर भी ये भैरवी भैरवी को टच करेगी भैरवी अब भजन कुछ नहीं है बहन जी इतना मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ सही बात ऐसे ही
0: चिराग चलो
1: भैरवी को टच कर कोई गीत नहीं ऐसे ही
0: हाँ भैरू जी को बुलाओ आप हाँ काले भैरू को दौड़ो
1: और उसमें फिर आखिर में भैरवी आधारित है गीत प्रेम की गंगा बहाते चलो जोत से जोत जगाते चलो उस पे आ जाऊंगा फाइनली

चार भजन या एक भजन आप वसुदेव बनाई सत्संग पधर सब गंदे आप चार चार महापुरुषों की वाणी सुना एक भजन और आपने भगवान श्री नारायण महाप्रभु।

0: And the person who is singing bhajans there is Bajrang Puri.
1: Az, aki ott énekli a bhajant, az Bajrang Puri.
0: And Bajrang Puri ji is also from Mahaprabhuji's family from Khatu.
1: És ő pedig Mahaprabhuji családjából, Khatuból származik.
0: And then you have Pappu ji Garg, who is also a very good singer from Jodhpur.
1: És Pappuji Garg pedig egy nagyon jó énekes Jodhpurból.
0: And many other singers.
1: És sok más énekes is.
0: And most of all, you can see that Gurudev is becoming active because Gurudev is also present there. Now not because it's midnight, he already went to rest.
1: És láthatjátok ilyenkor, hogy Gurudeva egyre aktívabb.
0: But he was sitting there for 2-2.5 hours.
1: Ott ült korábban, most már nem, mert éjfél van.
0: And yes. So even when we meditate, and sometimes I felt that one day my thoughts were not always present, now they are. Before I was always running too much in the future. Not in the past. Past, I don't really care.
1: Néha, amikor meditálunk, akkor érezhetjük néha, hogy a gondolataink nincsenek jelen.
0: Okay, so Ganeshwarji is now live. He's speaking.
2: And after, I think, almost a year, our beloved Vishwa Guruji came to Kailash Ashram, and he was sitting in the hall for a few hours, giving blessings. And now he is also enjoying satsang, listening from his room. So it's a holy place. It's amazing that this is such a small village and nobody in India is so much know about this place as we know in Europe and around the world. So this place, Kailash, and Sridevapuri is more popular and more known in Europe than in India itself. It's like a divine game or leela by our parampara. So I welcome you all, even virtually, on this darshan of the Kailash, which you can see. We have 9 bhajans, we have our beloved people from Europe and around, and we have of course many local from Sikar and from Manikatu area. We have many great singers, now this youngest edition of Pali, he will also sing very nice bhajans. So I'm very blessed to be able to be present in this holy place on this holy day, on this special occasion when Devapuriji took his divine form and left this world to help us in other ways. Siddhik Narayan Bhagavan Ki Jai, Devadidev Devishwar Mahadeva Ki Jai. Hinudanam Samrat Samadhananti Bhagavan Ki Jai, Vishwa Guru Mahalashya Samrachanti Gurudeva Ki Jai.
1: Arról beszélt, hogy nagyon boldogok vagyunk, hogy Swamiji több mint egy év után ellátogatott Kailashba. Kailash egy igen kis falu.
0: Hari Om. Sadashivasamarambham Shankaracharyamadhyamam Asmadacharyaparyantam Mande Guru Paramparam Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwarah Gurur Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha Mannatha Shri Jagannatha Madguru Shri Jagadguru Mamatma Sarva Bhutatma Tasmai Shri Gurave Namaha. सर्वप्रथम पदम परमपिता परमेश्वर के पावन चरणों में मेरा नमन. हमारे श्री अलपुर जी सिद्धपीठ परंपरा के गुरुओं को मेरा नमन. हमारे प्रिय गुरुदेव विश्वगुरु महामंडलेश्वर महेश्वरानंदपुर जी महाराज के पावन चरणों में मेरा साष्टांग नमन प्रणाम। कैलाश में विराजमान महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वरपुर जी महाराज, हियर इन वेप ऑल सन्यासीज, ओम नमो नारायण टू ऑल ऑफ यू। और वहाँ कैलाश ग्राम में हमारे पावन पवित्र आश्रम में पूज्य गुरुदेव के जितने भी भक्तगण आए हुए हैं, आप सबको भी मेरा हरिओम। विक्रम, एक बार उनसे पूछना, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है आप लोगों को, सबको वहाँ? मेरा, आप सब दिख रहे हो मेरे को वहाँ? तो आप सब, हम सब बड़े सौभाग्यशाली है कि हम सब श्री देवपुर जी महाराज के महासमाधि दिवस पर कैलाश ग्राम में एकत्रित होकर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सब अपने देवपुर जी महाराज की महासमाधि दिवस को मना रहे हैं। आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव का भी स्वास्थ्य इतना अनुकूल न होने के बावजूद भी गुरुदेव भगवान वहाँ कैलाश आश्रम में विराजमान हैं, आप सबको आशीर्वचन दे रहे हैं, आप सबसे दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है आप सबको। और महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वरपुर जी महाराज भी वहाँ विराजमान है और आप सबको अपनी अमृतवाई वाणी के साथ भजन सत्संग सब आयोजन चल रहा है। और वहाँ मंच पे विराजमान पप्पू जी गर्ग, बजरंगपुरी जी और अन्य जितने भी भजन गायक वहाँ उपस्थित है, आप सबको भी गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे। आप सब बहुत आगे ऐसे ही अपने भजन संध्या का और सत्संग का लाभ उठाए। आप सब ग्रामवासी, जितने भी ग्रामवासी वहाँ पधारे हैं, जितने भी

0: ग्रामवासी गुरुदेव के सानिध्य में अपने उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए पधारे हैं, उन सबका भी आश्रम में स्वागत है। भगवान श्री देवपुरी जी महाराज का जो अस्तित्व है, जो श्री देवपुरी जी महाराज का जो आशीर्वाद है, वह निरंतर पीढ़ी दर आज भी उस आश्रम में महसूस हो सकता है। और हम सब कैलाश आश्रम में बैठे बैठे भी गुरुदेव का, श्री देवपुरी जी महाराज का जो उनका अस्तित्व है, जो उनकी ऊर्जाएं है, उन सब ऊर्जाओं का सेवन हम वहाँ बैठे बैठे कर पा रहे हैं, हमारे लिए कितना सौभाग्यशाली है। हम भी चाहते हैं कि हम सब भी वहाँ आपके साथ में, वहाँ गुरुदेव के सानिध्य में रहें, पर यहाँ पे भी कार्यक्रम चल रहा है, तो हम यहाँ पे 300-400 लोग यहीं बैठ के आपको सबको कैलाश आश्रम के वहाँ दर्शन कर पा रहे हैं। और ये इस कलयुग की, इस आधुनिक युग की एक अच्छी चीज़ है कि विश्व के किसी भी कोने पे हम बैठे हैं तो भी हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, और इस माध्यम से हम सब सत्संग लाभ ले सकते हैं। और हम सब यहाँ बैठकर जो देवपुर जी महाराज की जो गुफा है, उस गुफा में विराजकर, उस गुफा में बैठकर अपनी साधनाओं में लग्न हो सके, यही मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब उस गुफा में जाए, दर्शन करें और देवपुरी जी की जो ऊर्जा है उसको अपने अंदर समाहित कर सके, यही मैं शुभकामनाएं करता हूं। और आप सब इस देवपुरी जी की महासमाधि दिवस पर कैलाश आश्रम में बहुत सौंदर्य पूर्वक इस कार्यक्रम का आयोजन करें और गुरुदेव का सदा ही आप सबके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। गुरुदेव सदा ही आप सबके ऊपर शक्ति, भक्ति, वैराग्य प्रदान करें और गुरुदेव का जो शारीरिक शरीर है वहाँ आप सबके साथ विराजमान है, यह भी बड़ा सौभाग्य का विषय है, क्योंकि गुरुदेव का स्वास्थ्य इतना अनुकूल नहीं होने के बावजूद भी आप सबके बीच में आप सबको दर्शन देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए, यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि गुरुदेव का जो प्रेम है वह अटूट प्रेम है, गुरुदेव का प्रेम निरंतर आप सबके ऊपर बरसता है, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए गुरुदेव का प्रेम हमेशा आप सबके ऊपर ऐसे ही निरंतर इसी रूप से बरसता रहे। और भगवान श्री देवपुर जी महाराज, श्री दीप नारायण महाप्रभु जी महाराज, हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी माधवानंदपुर जी महाराज और हमारे सद्गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्रीमद परमहंस परिवराज काचार्य ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंदपुर जी महाराज का भी आप सबके ऊपर ऐसे ही उनका प्रेम आशीर्वाद बरसता रहे। और इस देवपुर जी की महासमाधि दिवस पर जो भी देवपुर जी महाराज ने हमको सिखाया है, जो भी देवपुर जी महाराज के बारे में हमने किताबों में पढ़ा है, जो भी हमारे गुरुदेव भगवान ने उनके बारे में हमें बतलाया है, उन सब चीज़ों को हमारे दैनिक जीवन में अपनाकर श्री देवपुर जी महाराज के जो प्रक्रियाएं थी, जो उनके रहने का, उनके आशीर्वाद देने का तरीका था, वह सब अपने जीवन में अपनाए। केवल उपदेश नहीं है जो सिर्फ गुरुदेव हमें देते रहे, जो हम लीला अमृत में पढ़ते थे वह सिर्फ गुरुदेव का उपदेश नहीं है और उनकी लीलाएं नहीं है, पर हम तुच्छ मनुष्यों को उस आध्यात्मिक जीवन पर अग्रसर होने के लिए हमें बतलाई गई चीज़ें हैं जो हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए, जो हमें अपने जीवन में अनुकूलन करके और अपने जीवन में हर चीज़, हर द्वेष, मोह, काम, क्रोध, मद, लोभ, इन सब को हटाकर और केवल गुरु भक्ति के और साधना के और अपने आध्यात्मिक जीवन पर अग्रसर होने के लिए, हमें इस आध्यात्मिक पथ पर उजागर करने के लिए हमें गुरुदेव का सानिध्य, गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता रहा है। और इसी प्रकार से हम सब की इच्छा है कि गुरुदेव का, हम सब का स्वास्थ्य उनको लगे, हम सब की उम्र उनको लगे और वह हजारों साल जिए और हजारों साल हम सबको आशीर्वाद देते रहे और हम सब का जीवन, हम सब का जो ये मनुष्य जीवन है इसे अग्रसर होने के लिए उनका आशीर्वाद सदा हमारे पर बना रहे। यह मनुष्य जीवन जो है ना, बड़ा अनमोल है, इसे हम ऐसे ही गंवा देते हैं। किस प्रकार से गंवाते हैं? आजू बाजू चीजा देख के, काम क्रोध मद लोभ के चंगुल में फंसकर, उस मकड़ी के जाल में फंसकर हम सब वहीं लोट मोट हो जाते हैं। तो उसे सब हटाकर और हमें अपनी धारणा को ऐसी बनानी है कि हमारे विचारधारा ऐसे चले कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो अभी आप सबको अपना भार, अपना जो भी चीज़ें हैं, दुख दर्द कष्ट सब उस देवपुर जी आश्रम में छोड़कर और कोई भार अपने कंधों पे लेके नहीं जाना है। अपने सिर्फ प्रेम, हमारे बीच में एकता और गुरु भक्ति ऐसे ही अग्रसर हो, यही शुभकामनाएं देकर गुरुदेव का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे। हम आप सबके भजन का आनंद लेंगे अभी कुछ भजनों का। आप इसी प्रकार से इस आश्रम के अंदर उस ज्योति को ऐसे ही अग्रसर बढ़ाते रहे। गुरुदेव ने आप सबको आपके हृदयों में श्री देवपुर जी, बाबा देवपुर जी महाराज की जो ज्योति है उस सब की आपको आपके दिलों के अंदर बसा दी है। अब उस ज्योति को हमारे अंदर सीमित नहीं रखना है, उस ज्योति को लेकर हम सब देशवासियों तक, ग्रामवासियों तक, जितने भी लोगों तक वह गुरुदेव का जो प्रेम और आशीर्वाद है, जो वह दिव्य ज्योति है, उसे हम ऐसे ही सब लोगों तक प्रकाशित कर सकें, यही शुभकामनाएं देते हुए गुरुदेव का शुभ आशीर्वाद। स्वस्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्ताम् न्यायेण मार्गेण महीन महिषा गौ ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम बाबा देवपुर जी महाराज की जय। अलकपुर जी महादेव की जय। सुदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वर अनंतपुर जी गुरुदेव की। आप सब आगे सत्संग का आयोजन रखें, ऐसे ही सुंदर सा भजन गाए और आप सबको गुरुदेव का शुभ आशीर्वाद। आप सबको मेरी आवाज आ रही है वहाँ कैलाश में अभी तक या नहीं? One of my favorite bhajans is Baba Dev Purji Maharaj.
1: So I asked
0: them to sing that one for us.
1: Azt kértem, hogy énekeljék el azt.
0: The person who sings that bhajan is drinking chai, so till then they will sing another bhajan.
1: Aki azt a bhajant énekelné, az még issza a tejáját, úgyhogy most egy másikat fognak énekelni. Hallunk.
2: आप जा कहीं भी यह मंच ग्रहण करें।
3: I am saying that my boy is there, are even shaving random people there because I don't know.

Hello, hello, hello, hello. Hello, hello, म्यूजिशियन ग्रुप वाले भैया जनाब भी है, आप मंच पर आए। परम योगेश्वर शिव स्वरूप सिद्धेवपुरी के महाराज के शिव पावन तप भूमि पर जितने भी महानुभव अतिथि का विराजमान है उन सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी से आगे और अनुमति लेते हुए मैं अपनी मुखारविंदो से भजनों को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यदि किसी प्रकार की त्रुटि रह जाए तो नाना बालक समझ के मुझे क्षमा करें। धन्यवाद।

जो उपदेव कि बह जा तो बहुत सुंदर बहन मार सतगुरु पकड़िया केस उमर डूबत भजन तारियो गुरु दे साजो उपदेश संत पर बोलिया कि गुरु सा आप नहीं होता इन जगत में तो कौन कर दो मारी साय भोगतो तो तुम्हारी ये भली करिए गुरु दादा ये जीवरा क्यों चरा सिंध जाता तो अपनी मीठी मीठी ताली के साथ इस भजन का पालन करूंगा तो बिल्कुल नाचते हुए झूमते हुए और जिसने को जिसको भी अगर नाचने का मन है तो ये आप मौका ना झुकते हो कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। इसका उद्देश्य मनुष्य तभी समझता है जब उसके ऊपर गुरु की कृपा होती है और गुरु कितने कौन विराजमान एक बार दोनों हाथों को उठाकर गुरु का जयकारा लगाए बड़े शतकार उठाया

ध्यान से सुना। ये मोमाया नदी भारी ने खो गई ओ कोही वारी, ओ मोमाया नदी भारी। सुनो ये जो माया जाल है ये बहुत बड़ा है, इसका कोई पार नहीं है। और मन के इंद्रियों को नियंत्रण करना हर किसी के बस की बात नहीं है।

0: जा रहा हूँ कैलाश के निवासी, उसके पश्चात हमारे मेहमान आए हुए हैं।
1: Yeah, thank you.